0: है अक्सर डीएवी रेडियो रीरॉक
1: Erlinia, August Erner,
2: August Er D A B.
0: Starshu Nashing to go.